केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गाल दर्शन प्रभु करुण छलीला उनै को चल चोर प्रभु विषय अरुका कुनै को राम हूं परमात्मा ते कहाँ भिखारी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो शैलों सामुदायिक एफएम बैने में थोपलो 7 MHz बाट हो बद्र प्रसाद सागबाट आज विक्रम सम्मत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 7 तारीख भाद्र 22 गते सोमवार आज अजा एकादशी को व्रत गर्ने दिन हो। धार्मिक महानुभावहरूले आज अजा एकादशी को व्रत गर्नु पर्दछ। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पैभरी।

मेरो नाम सूर्यबार थापा भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्णो रघुवर बिमल दश जोदायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम लोग उजागर रामदूत अजुलत बलधामा अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बर्ज और ध्वज विराजई कांदे मुझे जनव साजई शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल गजर आया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र के काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर्षियुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हार जस गावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा इन कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषन मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधु फल जानु प्रभु मंदिरी का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुगर तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखबारे होतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रख से काउ को डरना आपन तेज समारोह आपे तिनोलोक हागते कापे भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा इनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसी जगदेव जी आरा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमन दिगे दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदावर रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जायी जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से सर्व सु करई संकट कटई मिट सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की आई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसी दास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय मोहडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं श्रभु शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंगबली।